और अपने हाथ को ना तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं, और ना बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो, और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और दरमांदा होकर बैठ जाओ।

ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं, और जब ये सरगोशियां करते हैं यानी जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है, देखो उन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते।

और अपने परवरदिगार की किताब को जो तुम्हारे पास भेजी जाती है पढ़ते रहा करो, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और उसके सिवा तुम कहीं पनाह भी नहीं पाओगे।

और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते और उसकी खुशनुदी के तालिब हैं, उनके साथ सब्र करते रहो और तुम्हारी निगाहें उनमें से गुजर कर और तरफ न दौड़ें कि तुम आराइश जिंदगानी ये दुनिया के खास गार हो जाओ। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया है, उसका कहा ना मानना।

और इस तरह उस शख्स को उनकी पैदावार मिलती रहती थी। तो एक दिन जबकि वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुमसे माल और दौलत में भी ज्यादा हूँ और जत्थे और जमात के लिहाज से भी ज्यादा इज्जत वाला हूँ।

और उसके मेहों को अजाब ने आ घेरा और वो अपनी छतरियों पर गिरकर रह गया, तो जो माल उसने उस पर खर्च किया था उस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता।

0: उस वक्त खुदा के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हुई और न वो बदला ले सका।
1: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
0: यहां से साबित हुआ कि हुकूमत सब खुदाए बरहक की है, उसी का सिला बेहतर और उसी का बदला अच्छा है।

और उनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दो। वो ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की रुईदगी मिल गई, फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं। और खुदा तो हर चीज पर कुदरत रखता है।

0: उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और उसने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता लिया।
1: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا
0: موسى نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے

0: तो दोनों चल पड़े। यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज्र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने इसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दे? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की।
1: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا।
0: खिज्र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे?
1: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا।
0: मूसा ने कहा कि जो भूल मुझसे हुई उस पर मुआखिजा न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल न डालिए।

0: कर तरकिश की तरफ हाथ बढ़ाया और पांसे का तीर निकाल कर ये जानना चाहा कि मैं इन्हें जरर पहुंचा सकूंगा या नहीं। तो वो तीर निकला जो मुझे नापसंद था, लेकिन मैंने तीर की नाफरमानी की और घोड़े पर सवार हो गया। वो मुझे लेकर दौड़ने लगा, यहाँ तक कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरात सुन रहा था और आप इल्तफात नहीं फरमा रहे थे, जबकि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु बार बार मुड़ कर देख रहे थे, तो मेरे घोड़े के अगले दोनों पांव जमीन में धंस गए, यहाँ तक कि घुटनों तक जा पहुँचे और मैं उससे गिर गया। फिर मैंने उसे डांटा तो उसने उठना चाहा, लेकिन वो अपने पांव बमुश्किल निकाल सका। बहरहाल जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसके पांव के निशान से आसमान की तरफ धुएं जैसा गुबार उड़ रहा था। मैंने फिर पांसे के तीर से किस्मत मालूम की और फिर वही तीर निकला जो मुझे नापसंद था। उसके बाद मैंने अमान के साथ उन्हें पुकारा तो वो लोग ठहर गए और मैं अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पास पहुँचा। जिस वक्त मैं उनसे रोक दिया गया था, उसी वक्त मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ग़ालिब आकर रहेगा। चुनाचे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी कौम ने आपके बदले दियत का इनाम रखा है, और साथ ही मैंने लोगों के अजाइम से आपको आगाह किया और तोशा और साजो सामान भी पेशकश की, मगर उन्होंने मेरा कोई सामान नहीं लिया और ना मुझसे कोई सवाल किया, सिर्फ इतना कहा कि हमारे मुतालिक राजदारी बरतना। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से गुजारिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मुझे परवाना अमन लिख दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया और उन्हें चमड़े के एक टुकड़े पर लिख कर मेरे हवाले कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। इस वाक़े से मुतालिक खुद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी एक रिवायत है। उनका बयान है कि हम लोग रवाना हुए तो कौम हमारी तलाश में थी, मगर सुराका रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन मालिक बिन जाशम के सिवा, जो अपने घोड़े पर आया था, और कोई हमें ना पा सका। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये पीछा करने वाला हमें आ लेना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। बहरहाल सुराका वापस हुआ तो देखा कि लोग तलाश में सरगर्दा हैं। कहने लगा, उधर की खबर खोज ले चुका हूँ, यहाँ तुम्हारा जो काम था वो किया जा चुका है। इस तरह लोगों को वापस ले गया, यानी दिन के शुरू में तो चढ़ा आ रहा था और आखिर में पासवान बन गया। रास्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरीदा आ मिले। ये अपनी कौम के सरदार थे और कुरैश ने जिस जबरदस्त इनाम का ऐलान कर रखा था, उसी की लालच में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में निकले थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हुआ और बातचीत हुई तो नकद दिल दे बैठे और अपनी कौम के 70 आदमियों समेत वही मुसलमान हो गए। फिर अपनी पगड़ी उतार कर नेजे से बांध ली, जिसका सफेद फरीरा हवा में लहराता और बशारत सुनाता था कि अमन का बादशाह, सुलह का हामी, दुनिया को अदालत और इंसाफ से भरपूर करने वाला तशरीफ ला रहा है। रास्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु मिले। ये मुसलमानों के एक तजारत पेशा गिरोह के साथ मुल्क शाम से वापस आ रहे थे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को सफेद पारचा जात पेश किए। सामईन, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा वक्फा। वक्फे के दौरान आप सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्फे के बाद हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।
1: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ UCP की दुनिया FM 92.6।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: पाकिस्तान का नाम रोशन करना। जाग जाग जाग जाग जा। पाकिस्तान जाग जाग।
1: ये आवाज है

0: सुनते रहिए FM 92.6 UCT की दुनिया।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
2: मस्ती के पास,
1: सिर्फ FM 92.6 UCT की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

0: बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इन सब
1: सब्जेक्ट्स में, क्रॉस क्योंकि फैकल्टीज पार्टिसिपेशन होगी, एक अच्छी नेटवर्किंग भी होगी इसके हवाले से, और दूसरा ये है कि हमारे अपने स्टूडेंट का काम भी शोकेस होगा। इस तरह कंपटीशन से जब वो विन करेंगे तो उनको ऑब्वियसली इंकरेजमेंट भी मिलेगी, वो इंकरेज होंगे कल को इससे ज्यादा अच्छा काम करने के हवाले से, और फिर क्योंकि इसमें जजेस होंगे, इसमें एक्सपर्ट्स होंगे, तो वो उनको फीडबैक भी देने होंगे कि हाउ दे कैन इंप्रूव देयर वर्क। तो ये उनके लिए फ्यूचर उनके करियर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो इसी वजह से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स में मैक्सिमम पार्टिसिपेट भी करें और एक कंपटीशन की फिजा को बहुत अच्छा और पॉजिटिवली लेकर चले।
0: और सर जैसे अभी आप जजेस की बात कर रहे थे, तो क्या मीडिया इंडस्ट्री से और जितने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हैं क्या वो इनवाइटेड होंगे एज ए जजेस और वो इस गाला का हिस्सा होंगे?
1: जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है कि इस गाला के अंदर हम लोगों ने एक और छोटा सा सेगमेंट लेके आ रहे हैं और वो करियर काउंसलिंग का है। हमने ओवर द इयर्स देखा है कि स्टूडेंट में ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब वो अपने 5 सेमेस्टर के बाद 6ठे सेमेस्टर में जाना होता है और वो स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करनी है और फिर फ्यूचर इस वक्त इंडस्ट्री में करियर किसमें बेहतर है, तो उसके हवाले से कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी रहते हैं। तो हमने इसका एक हिस्से में एक करियर काउंसलिंग सेमिनार को भी हम प्लान कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो हमारी मीडिया की सब फील्ड्स हैं उससे ताल्लुक रखने वाले लोग एक्सपर्ट्स आए और उनको बताएं कि उनकी इस इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे वो अपने आप को स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए इक्विप्ड करें, क्या स्किल सेट सीखने की जरूरत है जो उनको कल को जॉब तलाश करने में और अच्छा करियर बनाने में मदद करेगी। तो डेफिनेटली एक तो इस हवाले से भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, दूसरा जहां जजेस आ रहे हैं, जजेस में हमारी कोशिश ये भी है कि कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाएं। डेफिनेटली एक्सपर्ट्स ही आएंगे, वही इनको जज करेंगे, और उन एक्सपर्ट्स में हमारी कोशिश है कि जो हमारे अपने अलुमनाए हैं जो इसी तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, तो हम उनको ही बुलाएं एज जजेस ताकि वो भी एक प्राउड फील कर सके अपने अल्मा मैटर्स में वापस आके, अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में वापस आके जहां से उन्होंने सीखा और आज वो बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं।
0: और साथ हमारे स्टूडेंट्स जो इस पूरे गाला का हिस्सा है, पार्टिसिपेंट है, वो भी सीख सकें कि एज इन टाइम अगर वो भी इसी तरह से मेहनत करेंगे तो दे विल बी ऑन दैट पोजीशन।
1: मेंटली मोटिवेशन भी है कि ये वही स्टूडेंट जो यहां से पढ़ के इन जगहों पे जाके।
0: और सर इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसमें नेटवर्किंग किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो अपनी इनहांस कर सकते हैं या नेटवर्किंग का कितना मौका मिलता है उनको एक दूसरे से सीखने का, डिफरेंट और अदर मीडिया पर्सनालिटीज से या किसी स्पेशलिस्ट से या स्किल सेट जो उनका है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्पेसिफिकली विद रेलिवेंस टू नेटवर्किंग?
1: नेटवर्किंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर पर अगर हम मीडिया के स्टूडेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि उसका तो शायद सर्वाइवल ही नहीं है नेटवर्किंग के बगैर। और इस तरह के इवेंट्स की अगर हम बात करें तो एक तो मैनेजेरियल साइड से देखेंगे वो स्टूडेंट्स जो उसको मैनेज कर रहे हैं तो उनकी अपनी फैकल्टी मेंबर्स के साथ, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक नेटवर्किंग बनती है, उनको पता लगता है कि एक्चुअल काम करने का तरीका कार क्या है। इसी तरीके से जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये क्रॉस फैकल्टी यहाँ पे पार्टिसिपेशन आएगी, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और पहले भी जैसे कि अक्सर फैकल्टी से करते हैं, साइकोलॉजी वाले करते हैं, लॉ वाले बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट साइंसेज से आती है, पोस्टर डिजाइनिंग के हवाले से आईटी डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा एंट्रीज आ रही होती है हम लोगों को, और फिर क्योंकि एंकरिंग एंड होस्टिंग इज अ प्लेटफॉर्म जिसके लिए जो भी समझता है कि मेरी आवाज में इतना दम है और मैं उसमें स्ट्रेस एंड पॉजेस बहुत अच्छे तरीके से ला सकता हूँ, तो बहुत से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब क्रॉस फैकल्टी पार्टिसिपेशन होती है तो उसमें बच्चे सीखते हैं एक दूसरे से, उनका मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का। उस इवेंट में जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं और कैसे वो कम्पीट कर रहे हैं, माइंड सेट क्या है, मुझे लगता है कि शायद एक इंसान एक छोटी सी शेल से निकल के एक बड़े शेल में जाता है जहां पे उसको आईटी का माइंड सेट डिफरेंट है, मैनेजमेंट का जो स्टूडेंट उसका माइंड सेट एक अपने अंदाज से है कि वो कैसे सोचता है किसी प्रोडक्ट को शूट करना है या कोई पोस्टर डिजाइन करना है, उसमें वो उसके जो विजुअल एलिमेंट्स है वो उनको कैसे परसीव कर रहा है। तो आई थिंक ये लर्निंग भी है और नेटवर्किंग भी है कि स्टूडेंट जब क्रॉस फैकल्टी मिलते हैं, बात करते हैं, कम्पीट करते हैं, तो दे केम टू नो एंड हाउ वी कैन इंक्रीज आवर स्किल्स।
0: ऐसे ही है मेरे ख्याल से इस तरह के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, गालाज होते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेवेंट जो भी बच्चों को सीखने का मिलता है तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहिए। सो सर जैसे अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं तो इस कम्युनिकेशन गाला में बच्चे किस तरह से एंट्रीज भेज सकते हैं?
1: इसके लिए हमने जो एक तो सोशल मीडिया पे पोस्टर हमने बना के अनाउंस भी किया गया, तो उसमें एक तो QR कोड मेंशन किया गया है बकायदा, और इनकी बाकी तमाम जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए बी सी, इसकी लॉबीज में स्टैंडर्ड्स भी डिस्प्ले की गई हैं जिसपे QR कोड मेंशन है, आप उसको स्कैन करें और स्कैन करके आप डायरेक्टली यू विल लैंड इनटू अ ऑनलाइन फॉर्म जिसको आप फिल करेंगे और उसको फिल करके अपने जो भी डिटेल्स हैं जिसमें आपकी जो बेसिक आपकी रजिस्ट्रेशन फैकल्टी नाम फोन नंबर और जिस कैटेगरी के आप आना चाह रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एंट्री फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम चाहते हैं स्टूडेंट को इनकरेज करना चाह रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, अपने स्किल सेट को पॉलिश करें, उसको आजमाएं कई कंपटीशन में। तो इस हवाले से वो क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं अलॉन्ग विद क्यूआर कोड फैकल्टी ऑफ मीडिया के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी इसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप वहां से भी लिंक को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं और वहां पर भी फॉर्म फिल।
0: और सर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने रील सबमिट करवानी है या उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सबमिट करवानी है, तो सर रिलेवेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑलरेडी हैं या उनको बताई गई हैं या किसी तरह से पोस्टर्स वगैरह पे भी हैं?
1: एक तो जो हमने गूगल फॉर्म ऑलरेडी प्लान किया हुआ है जिसको हमने बनाया, उसमें कुछ थीम और सब थीम ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सेकंड, हम लोगों ने डिटेल के लिए ऑलरेडी इसमें कुछ व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं फोकल पर्सन के, ताकि स्टूडेंट अगर कोई इसमें फर्दर डिटेल इंस्ट्रक्शंस लेना चाह रहे हैं कि कहीं कंफ्यूज हैं तो वो उनको वहां भी इनकी कन्फ्यूजन दूर भी कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे जो फॉर्म के जो इंट्रोडक्शन है हमने उसका एक छोटा सा ब्रीफ भी इसके अंदर मेंशन किया है। तो आई होप सो कि काफी सारी इंस्ट्रक्शन वहां पे मेंशन है जो बच्चों को क्लियर हो जाएंगी। एंड देन लेटर ऑन वंस हमारी रजिस्ट्रेशन रिसीव हो जाएंगी तो हम लोग जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी में है तो हम उनकी मजीद बेहतर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ अगर रिक्वायर्ड होगी तो वो उस पे भी उनको वो दी जा सकती है इस हवाले से।
0: ठीक है, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। अभी हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। आप सुन रहे हैं FM 92.6 और मैं हूँ मरियम इरशाद।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6. मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ. और हमारे पास आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फाहद अनीस, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन गाला के बारे में. सर, अगर कम्युनिकेशन गाला की बात की जाए तो हम हर साल, आपको पता है कि बहुत अच्छा, पूरी फैकल्टीज और पूरी यूनिवर्सिटीज़ में से हमारा जो एक फिल्म फेस्टिवल है उसको हर जगह पर माना जाता है कि यस, फिल्म फेस्टिवल फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन UCP का दी बेस्ट है. तो कम्युनिकेशन गाला और फिल्म फेस्टिवल किस तरह से डिफरेंट है, और क्या कम्युनिकेशन गाला इन फ्यूचर हम इंटर यूनिवर्सिटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलावा डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज का हिस्सा बनेगा?
4: जी, थैंक यू वेरी मच. कम्युनिकेशन गाला और अगर फिल्म फेस्टिवल की बात करूँ, तो फिल्म फेस्टिवल आज से 4 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब हम फिल्म की स्पेशलाइज डिग्री लॉन्च कर रहे थे. और उसके पीछे भी यही मकसद था कि जो स्पेशलाइज डिग्री हो तो उसके साथ एक स्पेशलाइज्ड इवेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें. तो आपके पास बिल्कुल दुरुस्त है कि अब 4 साल हर साल हम तकरीबन करते हैं, और हमारा जो फिल्म फेस्टिवल है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हर साल से ऑर्गेनाइज होता है, और उसमें हर साल बेहतर से बेहतर आप

0: के टीवी एंकरिंग होस्टिंग है, रील्स के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, पोस्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं और टेलीविजन कमर्शियल और पीएसएम की बात कर रहे हैं, ताकि हम बाकी फील्ड्स ऑफ द मीडिया को भी टच किया जा सके।
1: और तो अभी आप बता रहे थे रील्स की बात कर रहे हैं और हम कमर्शियल्स की बात कर रहे हैं और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो क्या कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिनके ऊपर कहा गया बच्चों को, या दे आर फ्री टू मेक व्हाटएवर दे कैन इन बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटीज?
0: जहाँ तक तो बात टेलीविजन कमर्शियल्स की है या पब्लिक सर्विस मैसेज की है, तो उधर हम लोगों ने ओपन कैटेगरी दी है, क्योंकि टेलीविजन कमर्शियल्स के लिए स्टूडेंट को किसी एक खास टॉपिक या एरिया पे कन्फाइन कर देना तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर इतने शॉर्ट टाइम में टेलीविजन कमर्शियल निकालना सम टाइम मुश्किल हो जाता है, लॉन्ग विजर अदर। दो शॉर्ट तो नहीं, हम लोग एक अच्छा डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन स्टिल अच्छा टीवी से निकालने के लिए एक फोकस टाइम चाहिए होता है। तो हमने उसमें प्रेफरेंस यही दी कि ओपन कैटेगरी है, तो वो चाहे किसी ब्रांड की प्रमोशनल कैंपेन के हवाले से टीवी से कर रहे हों और या कोई सर्विस पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहे हों। जहाँ तक रील्स की बात है, तो उसके लिए हम लोगों ने जरूर कुछ थीम्स दिए हैं, जिनमें से एक फोकस हमारा, जैसे आपको पता है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बात हो रही है, तो हमने उसके हवाले से दिया गया, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो, सोशल इश्यूज पे अगर कोई बनाना चाह रहा हो, बहुत से हमारे सोसाइटी के ऐसे प्रॉब्लम है जिनको हाईलाइट किया जा सकता है, और फिर उसमें कुछ हमने फनी वे में भी हम चाह रहे हैं कि लोग आइडिया उन कह रहे हैं कि द मोमेंट दैट मैटर्स, कि कौन सा ऐसा लम्हा है जो आपको लगता है कि यस दिस इज इट, तो उसको भी
1: जिसने आपकी जिंदगी बदल दी
0: या जिसने
1: आपको डिप्रेशन दे दिया,
0: तो इस तरह के हमने एरियाज को दिया हुआ है उसके, ताकि स्टूडेंट उस खास थीम से रिलेटेड काम कर सके।
1: सर, कम्युनिकेशन गाला और फिल्म फेस्टिवल और आपकी फैकल्टी की अचीवमेंट और स्टार्ट से लेकर अब तक का सफर के ऊपर गुफ्तगू करके बड़ा मजा आया। मैं आपसे ये आखिर में बिल्कुल पूछना चाहूंगी कि अगर आप हमारे सामाइन को और हमारे स्टूडेंट्स को अपनी प्रोफेशनल या अपनी एजुकेशनल लाइफ में से कोई एक चीज जो आपने सीखी या एक ऐसा सबक जो आपको याद रह गया और उसको आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो वो ऐसा क्या है जो आप इनके साथ शेयर करना चाहेंगे?
0: वैसे तो बहुत सी चीजें होती हैं इंसान की लाइफ में, और ये जो आखिरी सवाल होता है सबसे मुश्किल होता है नॉर्मली, जब भी जितने मैंने इंटरव्यू दिए तो मुझे लगता है ये बड़ा टफ है अपनी पूरी लाइफ में से कोई ऐसी चीज समराइज करना। लेकिन एक चीज मैं अक्सर, बल्कि एक दिन पहले भी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, ही वॉज वेरी डिप्रेस के सर जॉब्स की समझ नहीं आ रही, करियर के हवाले से क्या करें, तो कहता मुझे किसी ने कहा कि सिर्फ हाथ के पास जाओ, तो मैंने उसको कहा, और कहता सर आप, यानी कि इनिशियल आपका पहला क्वेश्चन था और आखिरी में उसको रिलेट भी कर लेता हूँ। जो एक चीज मुझे आज तक याद है, जो मेरा कह लें कि मेन एक मैं जिसको प्रैक्टिस भी करता हूँ, क्योंकि जब हम लोग भी अपने इनिशियल करियर में थे तो समटाइम ऐसा टाइम आता था कि जॉब्स नहीं मिल रही, टेस्ट दे रहे हैं, फेलियर्स हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि कब
1: क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होंगे भी या नहीं, हमारे साथ वाले आगे निकल गए, हम पीछे रह गए,
0: घर वाले हैं, उनकी नजरें आपसे कुछ पूछ रही हैं, कुछ जानना चाह रही हैं, तो वो कुछ सर्टन टाइम बड़ा टफ होता है और मुझे लगता है चैलेंजिंग भी होता है, और फिर हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा होता है, तो उसमें से अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी करनी होती है। तो उस टाइम पे हमारे एक टीचर है, तो हम सर तीन दोस्त ना उनके पास चला जाया करते, जब भी हम फील करते यार ना हो गया फीलिंग लो, तो वो उन्होंने जब हमने जाना तो उन्होंने हमें इस तरीके से मोटिवेट करना, और बल्कि मैं उनका नाम भी देता हूँ, नईम मुस्तफा साहब हैं, मैं इसलिए उनको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ कि उन्होंने हमारे टफ टाइम में हमें बहुत ज्यादा हमें मेंटोरिंग की है। व्हेन वी वेंट टू हिम, तो वो हमें वहां पे बैठे बैठे करोड़पति बना दिया करते थे, इस हद तक मोटिवेट करते थे वो हमें।
1: टीचर जो है वो एक बच्चे की लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक टीचर और उसके पेरेंट्स का बहुत रोल होता है,
0: तो वो बहुत मोटिवेट किया करते थे। और उसके बाद उन्होंने तीन बातें हमें कही कि यार इस पे ना आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, या जो भी आप अपना बेस्ट दे सको वो दो। उन्होंने कहा जी एक, अगर किसी का रिस्क लगवाना हो, जॉब लगवानी हो, तो जितनी एफर्ट आप उसमें डाल सको आप डालो नेक नीयति के साथ, तो कभी इससे पीछे नहीं हटना। दूसरा उन्होंने कहा जी कि लोगों की हेल्थ के हवाले से अगर कोई इशू हो और अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सके किसी भी तरह से, उनको कहीं अच्छा मशवरा दे के फाइनेंशियली या कहीं गाइड करके या किसी को रिक्वेस्ट करके कि उनको जो भी फैसिलिटी उनको मिल सके, तो उस पे हेल्थ के हवाले से जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए तो कोशिश करें टू द बेस्ट ऑफ योर आप उसको परफॉर्म करें। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा जी कि एजुकेशन के लिए, अगर आपको किसी के एजुकेशन के लिए जो भी एफर्ट करनी पड़े, जिस भी हद तक जाना पड़े, जरूर जाएं। मगर ये इन तीन चीज़ों को आपने सबका जारी समझ के करना है, और वही कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं की जो चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई उसी को अमानतन एज इट इज आगे पहुंचा रहे हैं। और आई थिंक यही मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है, और जिसको मैं बाकायदा कॉन्शियस माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो यही मैं अपने सामईन को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को कहना चाहूंगा कि इन चीज़ों को फॉलो करें, एंड देन रेस्ट इज अपॉन वो हमेशा अच्छा ही करेगा।
1: आपसे गुफ्तगू करके बहुत मजा आया, मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया आपने फिडेलिटी आर के लिए हमें वक्त दिया और हमारे लिसनर्स को और मुझे सीखने के लिए इतना कुछ दे दिया, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं FM 92.6 और इसी के साथ हमारे ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले वीक दोबारा एक मजे से अच्छे से मेहमान के साथ हम फिडेलिटी आर में आपके साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे। आप सुन रहे हैं FM 92.6।

0: अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।
1: Are you tired of feeling lazy and bored?

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया FM 92.6।
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.

आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नाम बाहु मादर बाहु निहाद, जांका बाहु दाइमी बाहु निहाद, जिसका तर्जमा है बाहु की माँ ने नाम बाहु रखा क्योंकि बाहु हमेशा हु के साथ रहा। आपसे कबल तारीख में किसी भी शख्स का नाम बाहु नहीं था। सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह इसमें हु के ऐन मज़र हैं और अपनी कुतब में जा बजा अपनी फना और बका इसमें हु में बयान फरमाते हैं। सुल्तानुल आरिफीन की आंखों में बचपन से ही अजली नूर चमकता था और पेशानी नूर हक से मुनव्वर थी। आपकी शख्सियत बचपन में ही इतनी पुरकशिश थी कि जिस पर नजर डालते उसकी जिंदगी बदल देते, और ये अमल आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक जारी रहा। यहां तक कि आपकी नजर से बचने के लिए हिंदू उस वक्त अपने घरों से नहीं निकलते थे जिस वक्त आप बाहर होते।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की दुनिया
0: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा।
1: बाकी?
0: हाँ।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
3: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
4: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB की दुनिया।
5: मैं काम करके थक जाती हूँ।
6: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
7: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब, इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।
1: सुनना है तो इसे सुनो।

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: Station of the nation.

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो UCP की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Ladies and gentlemen, we are live now.
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहीं फिर के सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।

मौसीकी के सुरोरताल सुरोरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर पाको हिंद में दीन इस्लाम के फैलाने में जो किरदार औलिया कराम ने अंजाम दिया वो नाकाबिले फरामोश है। इन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जो कि 1103 हिजरी 1291 को पांडू के जिला कसूर के एक सैयद घराने में पैदा हुए। इनके वालिद हजरत सखी मोहम्मद दरवेश कूच गिलानिया से तरके वतन करके पांडू आ गए और यहाँ दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू किया। आपका सिलसिला नसब हजरत खास पाक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। हजरत सैयद अब्दुल मारूफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मर्द हकानी की इब्तदाई तालीम और तरबियत आपके वालिद माजिद हजरत सैयद शाह मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे साया हुई। बाद अज़ां आला तालीम के लिए अपने वक्त के इल्मी मरकज कसूर तशरीफ ले गए और मुर्शद कामिल हजरत शाह अनायत कादरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत होकर रूहानी तालीम हासिल की। आप वहदतुल वजूद की मंजिलों को जानते थे, इसलिए हर शेख को मज़र खुदा जानते थे। मुर्शद के लिए इंसान का दर्जा रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम अशार और काफियों के जरिए दीन मतीन की खिदमत की और पूरी जिंदगी तबलीग हक में गुजार दी।

0: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
3: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर ऑफ फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ, जिसमें हम बात करते हैं फैकल्टी से रेलिवेंट, एकेडेमिया से रेलिवेंट, अपॉर्चुनिटीज से रेलिवेंट, प्रोफेशनल लाइफ से रेलिवेंट, नेटवर्किंग से रेलिवेंट, स्किल्स और बहुत कुछ। आज हमारे प्रोग्राम फैकल्टी आर में जो शख्सियत मौजूद है उनका किसी भी तारुफ की उनको जरूरत नहीं है, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सिर्फ इस फैकल्टी के ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के भी हर किसी के हर दिल अजीज हैं। और अगर ये कहा जाए कि आप इस फैकल्टी के पायनियर्स में से, बानियों में से हैं, जिन्होंने इस फैकल्टी को बुलंदियों तक लेके जाने में एक नया और एक अहम किरदार अदा किया, तो हम सबके हर दिल अजीज डॉक्टर फाहद अनीस, HOD फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। और इसके अलावा आप UCP एडवेंचर क्लब के पैट्रन है और इस तरह की एक लिस्ट गो ऑन करती है। सो अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम सलाम,
2: कैसे हैं आप?
3: अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना खूबसूरत तारुफ करवाया।
2: एक्चुअली आप ये तारुफ डिजर्व करते हैं। सबसे पहले तो फैकल्टी आर में आपको खुश आमदीद।
3: थैंक यू।
2: अच्छा, जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि इस फैकल्टी के पायनियर में से आप एक हैं, तो आप मुझे ये बताएं और हमारे सामाइन को बताएं कि किस तरह से फैकल्टी का स्टार्ट कैसे हुआ और अब आप फैकल्टी को कहाँ देख रहे हैं, क्या स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इशूज थे, क्या अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को दी गई और अब किस तरह से चीजों को मजीद रिफाइन करके और कैसे एज अ मेंटोर स्टूडेंट्स के इतने हर दिल अजीज हैं।
3: ये तो बहुत लंबी स्टोरी है। ऑब्वियसली कल मुझे 11 साल पूरे हो गए हैं यहाँ पे फैकल्टी में, और मेरी ही 11 साल के साथ तकरीबन ये फैकल्टी भी 11 साल की हो गई है। जैसे आपने कहा कि मैं खुद इसका पायनियर फैकल्टी मेंबर हूँ। जब इसको स्टार्ट किया गया तो इसमें नो डाउट, जब किसी भी चीज को स्टार्ट किया जाता है तो उसकी उसमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं। तो इसमें भी जब स्टार्ट किया गया उस टाइम पे जो डीन थे डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब, वो डीन थे, आई वॉज अ फैकल्टी मेंबर। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, और उस ग्रोथ के साथ अपने करिकुलम को मैच करना, वो कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था। तो इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत मेहनत की और एक कोशिश की कि स्टूडेंट्स को इस तरह के कोर्सेज उनके रोड मैप में दिए जा सके ताकि जब इंडस्ट्री में जाएं वो लोग तो उनके पास वो स्किल सेट हो, क्योंकि डे वन से मेरा अपना भी ये एक विजन था। और फिर ऑब्वियसली जो सीखा हमने अपने उस टाइम पे डीन से, और फिर जो लेटर ऑन जितने भी हमारे मेन पोजिशन पे लोग आए और अपने बाकी भी उस्ताद से, वो यही कि स्टूडेंट को जो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई जाए उसको इस तरह से उसका प्रैक्टिकल करवाया जाए ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाए तो इंडस्ट्री में जाके वो अपने आप को एलियन फील ना करे। तो एक सबसे बड़ा पहले चैलेंज तो ये था कि बीएस से लेके पीएचडी तक तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के करिकुलम डिजाइन करना, फिर उसको ये भी जहन में रखना कि क्या ये जो कोर्सेज हम दे रहे हैं उसकी एक्सपर्टीज हमारे पास इंडस्ट्री में कैसे अवेलेबल है। और फिर जो नेक्स्ट बड़ा चैलेंज ये था वो उस प्रैक्टिकल चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लैब्स। तो पहले एक डेढ़ साल हमने उसको विद द हेल्प ऑफ आयर मैनेजमेंट उसको मैनेज किया, हमें जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसके अंदर रहते हुए काम किया। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त चलता चला गया, लोग भी ऐड होते गए, फैकल्टी मेंबर्स ने ज्वाइन किया, कारवा बनता गया। और आई विल से दिस कि जी वक्त के साथ साथ जो भी फैकल्टी मेंबर हमारे साथ ऐड हुआ, हर फैकल्टी मेंबर ने अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक इसकी वैल्यू एडिशन की है। आज अगर ये एक इतनी बड़ी फैकल्टी, इतना बड़ा डिपार्टमेंट और फिर एक अच्छा नाम रखने वाली फैकल्टी अगर मार्केट में, तो उसकी वजह शायद मैं अकेला नहीं हूँ। इनिशिएट जरूर किया था, चैलेंजेस जरूर थे, लेकिन उन चैलेंजेस को मेरे साथ बाकी तमाम फैकल्टी मेंबर्स ने, तमाम टीम ने उसको उन चैलेंजेस के ऊपर आके अपनी एक्सपर्टीज के साथ उसको टैकल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वी आर वन ऑफ द लाइक लार्जेस्ट फैकल्टी इन द प्राइवेट एंड इवन गवर्नमेंट सेक्टर, तो ये गलत ना होगा, लाइक ये मेरा अपना क्लेम है। और डेफिनेटली अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, तो वी हैव अ वेरी गुड रिसोर्सेज देयर इन द फैकल्टी। तो यस, अ लॉन्ग वे टू गो। और जब कभी सोचता हूं तो लगता है कि जैसे बहुत पुरानी बात है कि जब हमने शुरू किया।
2: ऐसे नहीं, आपको देख के बिल्कुल ऐसे नहीं फील होता कि आप 11 साल से यहाँ पर है और आप एज अ पायनियर और इतनी स्ट्रगल और हार्डशिप्स के बाद आपने चीजों को इतना रिफाइन किया है हमारे लिए। एज अ टीचर मैं देखती हूँ कि हमारे करिकुलम जब हमें पता चलता है ये कोर्स पढ़ाना है, वो हमारे लिए पढ़ाना हमें होता है कि ओके कोर्स डिजाइन हमें मिल गया और हमने पढ़ाना है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी डेडिकेशन है, वो ऑब्वियसली आपसे बेहतर कौन जान सकता है।
3: बिल्कुल ऐसे ही है। इवन कि आई स्टिल रिमेम्बर कि जब पहली बार हमें एनओसी मिला एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो हमने उसको बाकायदा यहाँ सेलिब्रेट किया था।
2: अच्छा।
3: क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज एमफिल और पीएचडी उसने से ऑफर नहीं कर रही थी, एक आध यूनिवर्सिटी थी, तो उसको उसका एनओसी अब कह लें कि हमारे लिए एक अचीवमेंट थी। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने कोशिश की तब भी, और अब ऑब्वियसली वो एडअप हो गया, बच्चों को एंगेज किया जा सके, मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवाई जाती थी यहाँ पे, बल्कि मैं पायनियर फैकल्टी मेंबर होने के साथ साथ जो मीडिया क्लब है उसका पायनियर पैट्रन भी रहा हूँ। अच्छा। तो हमने उसमें भी बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया। तब हमने बकायदा एक मीडिया गाला करवाया, मीडिया फेस्ट के नाम से, बल्कि हमने उसको लेके चले, और उसमें हमने जो हमारा ओल्डेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है पपेट शो, हम उसको इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे। तो कोशिश ये की जाती है कि बच्चों को कुछ पुराना ट्रेडिशन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को भी साथ साथ लेके चला जा सके। लेटेस्ट वर्ल्ड की डिमांड है वो आपको पता है कि हम रेगुलरली अपना करिकुलम ऐड कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज में एंगेज रखते हैं, कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल विजिट करवाएं, ताकि वो जैसे मैंने पहले कहा कि उनको एक एलियन फील ना आए। और उसके साथ फिर हमारी लाइक आई कैन अगेन से कि इन आवर फैकल्टी वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट कि जो हमारे इंटर्नशिप के स्टूडेंट हैं वो भी हमारी बताई हुई जगहों पे इंटर्नशिप करें, ताकि हम उनसे फीडबैक ले सकें, और हम लेते भी हैं। आपको भी अंदाजा है कि हमने मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, पीआर ऑर्गेनाइजेशंस, चैनल्स के साथ, रेडियो के साथ, न्यूज़पेपर के साथ एमओयू साइन ही इसी मकसद से किए हैं, ताकि बच्चों को वहाँ पर इंटर्नशिप पे भेजा जा सके, वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले सकें, और फिर जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो वो अपने आप को मनवा सकें।
2: ऐसे ही है सर। दूसरा सवाल मैंने आपसे किया था कि आप इतने हर दिल अजीज हैं बच्चों के, बींग एन एचओडी भी, बच्चों के फेवरेट लिस्ट में जो सबसे पहले नाम आता है वो डॉक्टर फाहद अनीस है। किसी भी क्लास में चले जाएं, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें, ऐसी क्या उसकी कहते हैं टिप एंड ट्रिक है, या क्या ऐसी मैजिकल पावर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे इतना ज्यादा आपको ऑन करते हैं एंड दे ऑन इट बाय हार्ट?
3: नहीं, मैजिकल पावर तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से। एक तो ऑब्वियसली थैंक टू ऑलमाइटी के वो जिसको इसे देना चाहे वो देता है, और इसमें शायद हमारा उतना कमाल नहीं है, ये मैं हमेशा मैं इसका मानने वाला हूँ। दो, उसके अलावा दो चीज़ें हैं जो यानी कि मुझे लगता है कि यदि इंसान को प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप हर दिल अजीज हो या लोग आपको पसंद करें, बट उसमें दो फैक्टर्स मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, और अगर कोई प्रैक्टिस करे तो ये चीज़ वेरीफाई भी हो सकती है। एक, आपकी नीयत का साफ होना। मेरे पास जब भी कोई आया, वो स्टूडेंट है या मेरा कोलीग है या कोई विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है या कोई मेरे सीनियर हैं, तो मैंने हमेशा कोशिश ये की कि उनको जो एडवाइस की जाए, उनको जो सजेशन दी जाए, उनको जो कोई एक किसी भी इशू में अगर पड़े तो उसका कोई सलूशन दिया जाए, तो वो दिया जाए जो बिल्कुल मुझे लगे कि यस दिस इज ऑनेस्ट, इफ आई बीइंग एट हिज और हर पोजीशन तो मैं भी शायद यही करता। तो मेरी एक तो नीयत, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उस हवाले से बिल्कुल उनको ऑनेस्ट ओपिनियन दी जाए, ऑनेस्ट मशवरा दिया जाए, जो मेरा दिल और दिमाग कह रहा है मैं वो उनके सामने रख देता हूँ। और तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का बहुत रोल है कि जब आप किसी को ऑनेस्टी के साथ मशवरा दे रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो वो क्योंकि इंसान का एक ऑरा होता है ना, तो आपके ऑरे से वो वाइब्स निकलती हैं, और आपका जो ओपोनेंट है, जो आपसे सुन रहा है, आपसे समझ रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, तो उसको ये फील भी होती है आई थिंक कि हाँ यार ये जो बंदा बात कर रहा है, क्योंकि शायद उसमें आप स्ट्रेस उस दे रहे होते हैं, आप उसमें मसाले ऐड कर रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो उस ऑनेस्टी के साथ जो एग्जांपल्स हम अपनी रियल लाइफ की दे रहा होता हूँ, तो एक तो ये फैक्टर उसमें जरूर है। दूसरा चीज जो मैंने बीइंग एक्सपर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सीखी और देखी है वो ये कि आई विल ट्राई कि मैं कोई भी जब मेरे पास आए तो इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग मैं उसकी बात सुनता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम हमेशा जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन मैं लोगों को सुनने के लिए सुनता हूँ। तो जब वो अपनी बात को शेयर कर लेते हैं, हर कंप्लीट बस्ट आउट कर देते हैं, इवन के सेम टाइम मैं हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी कर पाता, बट वो जब आप सुन लेते हैं उनको लगता है कि यार ही इज समवन कि जो हमारी बात सुनता जरूर है, हमारा गिला है, शिकवा है, वो सही बात है गलत बात है, बट आई डू लिसन टू माई स्टूडेंट्स, मैं उनको टाइम देता हूँ यहाँ से घर, यानी कि ऑफिस से जाके भी, अपने कोलीग्स को भी, और वेलकम करता हूँ क्रिटिसिज्म अपने ऊपर भी। तो मुझे लगता है ये दो फैक्टर्स हैं जो शायद,
2: और इसी पे मैं ऐड ऑन करूंगी कि वाकई ऐसे ही है, जब हमें कोई भी मसला होता है एज अ लेक्चरर और एज अ टीचर और एज अ कोलीग, कुछ भी, इवन हमारी पर्सनल लाइफ का है, प्रोफेशनल लाइफ का है, तो पता होता है कि सिर्फ हाथ संभाल लेंगे। सो यही से हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लिसनर्स अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। आप सुन रहे हैं फैकल्टी आर, मैं हूं मरियम इरशाद, प्रोग्राम FM 92.6 फैकल्टी आर के साथ।

0: 96 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आपके साथ। और आज हमारे मेहमान हैं हम सबके प्यारे, हम सबके हर दिल अजीज डॉक्टर फाहा दनीस। और अभी हम बात कर रहे थे उनकी स्ट्रगल्स, इशूज और जितनी भी अचीवमेंट्स और जितनी भी प्रॉब्लम्स इस फैकल्टी को बनाने में और जिस फैकल्टी के बेसिक से अब तक उन्होंने देखी और फिर इस फैकल्टी की अचीवमेंट्स में किस तरह से अपना रोल प्ले किया। अब सर, अभी जैसे आप बात कर रहे थे मीडिया फेस्ट की, तो अभी हम देखें रिसेंटली हमने कम्युनिकेशन गाला की अनाउंसमेंट किया। मीडिया फेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता होगा कम्युनिकेशन गाला से, बिकॉज मुझे मीडिया फेस्ट का आइडिया नहीं है। सो अब कम्युनिकेशन गाला जो है उसका बेसिक मकसद क्या है, क्यों हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उसका बेसिक मकसद क्या है और इस साल के कम्युनिकेशन गाला में कौन कौन सी सरगर्मियां जो है वो शामिल है?
2: जी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो मीडिया फेस्ट था वो उस टाइम यूसीपी जो मीडिया क्लब है उसका एक इवेंट था। जो क्लब का इवेंट होता है ऑब्वियसली दो, वो क्लब भी फैकल्टी का हिस्सा है, लेकिन क्लब की एक्टिविटीज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स इसलिए होती है कि वो उसको मैनेज भी कर रहे होते हैं, उसको अरेंज भी कर रहे होते हैं, आइडिया भी हमसे डिस्कस करते हैं, हम लोग उसको सुपरवाइज करते हैं, तो उसमें हम थोड़ी सी वैरायटी और तरह से ऐड कर सकते हैं। जहां तक कम्युनिकेशन गाला का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंसीव किया था फ्रॉम कम्युनिकेशन कार्निवल इनिशियली। और प्लान है कि हम एक इस तरह का मेला सजाएं यहां पे जिसको फैकल्टी खुद से होस्ट करे, और उस मेले के अंदर जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं यूसीपी के, क्योंकि आपको पता है कि हम एज अ फैकल्टी ऑफ मीडिया बहुत सी इवेंट्स करवाते हैं, फिल्म फेस्टिवल का भी हमारा होता है, हम सिंपोजियम भी करवा रहे होते हैं और भी कंपटीशन चल रहे होते हैं, थिएटर के भी आपको पता है कि हम अपने इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ ये कंपटीशन करवा रहे होते हैं, तो उसमें ज्यादातर जो एंट्रीज होती हैं वो यूनिवर्सिटी से बाहर आ रही होती हैं। इसी तरह जो यूसीबी का टाकरा है उसमें भी ऐसा है कि यूसीबी से बाहर की एंट्रीज आ रही है। तो हमने ये जो माइंड सेट था इसके बैकएंड पे वो ये था कि एक तो ओवरऑल जेनेरिक इवेंट हो और उसमें अपने हमारे यूसीपी के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हों कि वो उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकें, उसमें आए अपने जो भी उनकी स्किल सेट है। जैसे भी आपने बताया कि हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में कंपटीशन दिए, मिसाल के तौर पे पोस्टर कंपटीशन है, फिर हम इसमें सोशल मीडिया रील्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, फिर इसी तरीके से हमने टेलीविजन कमर्शियल या पब्लिक सर्विस मैसेज की एक कैटेगरी दी है, और फिर जो हमारी इसमें लास्ट कैटेगरी है वो टीवी एंकरिंग एंड होस्टिंग की है।
1: ठीक है,
2: तो इसको हमने ओपन किया तमाम फैकल्टीज जो यूसीपी के अंदर हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए कि वो आए इसमें पार्टिसिपेट करें, और फिर इसके अगेंस्ट प्राइज मनी भी है विनर की भी और रनर अप की भी। तो आइडिया ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दें, उनके पास भी ऐसे मौके हों कि वो यूनिवर्सिटी में रहते हुए जो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या उन्होंने जो चीजें सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करें और इसका हिस्सा बन सके।
1: सो सर, इसमें एज अ पार्टिसिपेंट सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं?
2: फिलहाल हमने जो कम्युनिकेशन गाला के लिए रखा है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं हम उनके साथ ही, यानी कि वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं।
1: और ये पार्टिसिपेशन से उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या ऐसा जो है मेन अचीवमेंट्स आएंगी या इसका क्या रोल होगा उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में?
2: जी, जो सेकंड पार्ट था जो मैं आपको बताना चाहूँ वो यही है कि एक तो हम इसको बच्चों की पार्टिसिपेशन को, एंगेजमेंट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि बच्चे जो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं उनको एक मौका मिलेगा कि वो अपनी उन स्किल्स को शोकेस कर सके। मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजिंग एंड पीआर के स्टूडेंट्स जो अपनी स्पेशलाइजेशन के आखिरी मराहल में हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि टीवीसी के शूट कैसे किया जाता है, उसका कॉपी कैसे लिखनी है, उसका आइडिया कैसे बनाना है और पूरी स्टोरी बोर्डिंग क्या करनी है। फिर इसी तरीके से जो बच्चे टीवी एंकरिंग एंड होस्टिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है कि वो एक ऐसा कंपटीशन में आए, कंपटीशन के आने से देखिए एक तो बेनिफिट ये होगा कि वो अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा मुझे लगता है कि इस तरह के कंपटीशन एक हेल्दी जो है एनवायरमेंट डेवलप करते हैं।
1: और जैसे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और उन्हें क्रेज है कि वो टीवी सीरीज शूट करें, पीआर या एड की कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं या फिल्म से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे पास जितने अदर सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इन सब सब्जेक्ट्स में,
2: क्योंकि फैकल्टीज पार्टिसिपेशन होगी, एक अच्छी नेटवर्किंग भी होगी इसके हवाले से, और दूसरा ये है कि हमारे अपने स्टूडेंट का काम भी शोकेस होगा। इस तरह कंपटीशन से जब वो विन करेंगे तो उनको ऑब्वियसली इंकरेजमेंट भी मिलेगी, वो इंकरेज होंगे कल को इससे ज्यादा अच्छा काम करने के हवाले से, और फिर क्योंकि इसमें जजेस होंगे, इसमें एक्सपर्ट्स होंगे, तो वो उनको फीडबैक भी दे रहे होंगे कि हाउ दे कैन इंप्रूव देयर वर्क, तो ये उनके लिए फ्यूचर उनके करियर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो इसी वजह से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स में मैक्सिमम पार्टिसिपेट भी करें और एक कंपटीशन की फिजा को बहुत अच्छा और पॉजिटिवली लेकर चले।
1: और सर, जैसे अभी आप जजेस की बात कर रहे थे, तो क्या मीडिया इंडस्ट्री से और जितने प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, क्या वो इनवाइटेड होंगे एज ए जजेस और वो इस गाला का हिस्सा होंगे?
2: जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है कि इस गाला के अंदर हम लोगों ने एक और छोटा सा सेगमेंट लेके आ रहे हैं और वो करियर काउंसलिंग का है। हमने ओवर द इयर्स देखा है कि स्टूडेंट में ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब वो अपने 5 सेमेस्टर के बाद 6ठे सेमेस्टर में जाना होता है और वो स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करनी है और फिर फ्यूचर इस वक्त इंडस्ट्री में करियर किसमें बेहतर है, तो उसके हवाले से कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी रहते हैं। तो हमने इसका एक हिस्से में एक करियर काउंसलिंग सेमिनार को भी हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम जो हमारी मीडिया की सब फील्ड्स हैं उससे ताल्लुक रखने वाले लोग एक्सपर्ट्स आएं और उनको बताएं कि उनकी इस इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे वो अपने आप को स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए इक्विप्ड करें, क्या स्किल सेट सीखने की जरूरत है जो उनको कल को जॉब तलाश करने में और अच्छा करियर बनाने में मदद करेगी। तो डेफिनेटली एक तो इस हवाले से भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, दूसरा जहां जजेस आ रहे हैं, जजेस में हमारी कोशिश ये भी है कि कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाएं। डेफिनेटली एक्सपर्ट्स ही आएंगे, वही इनको जज करेंगे और उन एक्सपर्ट्स में हमारी कोशिश है कि जो हमारे अपने अलुमनाए हैं जो इसी तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, तो हम उनको ही बुलाएं एज अ जजेस ताकि वो भी एक प्राउड फील कर सके अपने अल्मा मैटर्स में वापस आके, अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में वापस आके जहां से उन्होंने सीखा और आज वो बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं।
1: और साथ हमारे स्टूडेंट्स जो इस पूरे गाला का हिस्सा है, पार्टिसिपेंट है, वो भी सीख सकें कि एज इन टाइम अगर वो भी इसी तरह से मेहनत करेंगे तो दे विल बी ऑन दैट पोजीशन।
2: मोटिव मोटिवेशन भी है कि ये वही स्टूडेंट है जो यहां से पढ़ के इन जगहों पे जाके।
1: और सर इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसमें नेटवर्किंग किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो अपनी इनहांस कर सकते हैं या नेटवर्किंग का कितना मौका मिलता है उनको एक दूसरे से सीखने का, डिफरेंट और अदर मीडिया पर्सनालिटीज से या किसी स्पेशलिस्ट से या स्किल सेट जो उनका है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्पेसिफिकली विद रेलिवेंस टू नेटवर्किंग?
2: नेटवर्किंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर पर अगर हम मीडिया के स्टूडेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि उसका तो शायद सर्वाइवल ही नहीं है नेटवर्किंग के बगैर। और इस तरह के इवेंट्स की अगर हम बात करें तो एक तो मैनेजेरियल साइड से देखेंगे, वो स्टूडेंट जो उसको मैनेज कर रहे हैं तो उनकी अपनी फैकल्टी मेंबर्स के साथ, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक नेटवर्किंग बनती है, उनको पता लगता है कि एक्चुअल काम करने का तरीका कार क्या है। इसी तरीके से जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये क्रॉस फैकल्टी यहाँ पे पार्टिसिपेशन आएगी, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और पहले भी जैसे कि अक्सर फैकल्टी से करते हैं, साइकोलॉजी वाले करते हैं, लॉ वाले बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट साइंसेज से आती है, पोस्टर डिजाइनिंग के हवाले से आईटी डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा एंट्रीज आ रही होती है हम लोगों को। और फिर क्योंकि एंकरिंग एंड होस्टिंग इज अ प्लेटफॉर्म जिसके लिए जो भी समझता है कि मेरी आवाज में इतना दम है और मैं उसमें स्ट्रेस एंड पॉजिटिव बहुत अच्छे तरीके से ला सकता हूँ, तो बहुत से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब क्रॉस फैकल्टी पार्टिसिपेशन होती है तो उसमें बच्चे सीखते हैं एक दूसरे से, उनका मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का। उस इवेंट में जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं और कैसे वो कम्पीट कर रहे हैं, माइंड सेट क्या है, मुझे लगता है कि शायद इंसान एक छोटी सी शेल से निकल के एक बड़े शेल में जाता है जहां पे उसको आईटी का माइंड सेट डिफरेंट है, मैनेजमेंट का जो स्टूडेंट है उसका माइंड सेट एक अपने अंदाज से है कि वो कैसे सोचता है किसी एक प्रोडक्ट को शूट करना है या कोई पोस्टर डिजाइन करना है, उसमें वो उसके जो विजुअल एलिमेंट्स है वो उनको कैसे परसीव कर रहा है। तो आई थिंक ये लर्निंग भी है और नेटवर्किंग भी है कि स्टूडेंट जब क्रॉस फैकल्टी मिलते हैं, बात करते हैं, कम्पीट करते हैं, तो दे केम टू नो एंड हाउ वी कैन इंक्रीज आवर स्किल सेट।
1: ऐसे ही है मेरे ख्याल से इस तरह के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, गालाज होते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेवेंट जो भी बच्चों को सीखने का मिलता है तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहिए। सो सर जैसे अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं तो इस कम्युनिकेशन गाला में बच्चे किस तरह से एंट्रीज भेज सकते हैं?
2: इसके लिए हमने जो एक तो सोशल मीडिया पे पोस्टर हमने बना के अनाउंस भी किया गया, तो उसमें एक तो QR कोड मेंशन किया गया है बाकायदा, और इनकी बाकी तमाम जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग ABC की लॉबीज में स्टैंडर्ड्स भी डिस्प्ले की गई हैं जिस पे QR कोड मेंशन है, आप उसको स्कैन करें और स्कैन करके आप डायरेक्टली यू विल लैंड इनटू अ ऑनलाइन फॉर्म जिसको आप फिल करेंगे और उसको फिल करके अपने जो भी डिटेल्स हैं जिसमें आपकी जो बेसिक आपकी रजिस्ट्रेशन फैकल्टी नाम फोन नंबर और जिस कैटेगरी के आप आना चाह रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एंट्री फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम चाहते हैं स्टूडेंट को इंकरेज करना चाह रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, अपने स्किल सेट को पॉलिश करें, उसको आजमाएं कई कंपटीशन में, तो इस हवाले से वो QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं अलॉन्ग विद द QR कोड फैकल्टी ऑफ मीडिया के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी इसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहां से भी लिंक को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं और वहां पर भी फॉर्म फिल।
1: और सर जो इंस्ट्रक्शंस हैं अगर जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने रील सबमिट करवानी है या उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सबमिट करवानी है तो सर रिलेवेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑलरेडी हैं या उनको बताई गई हैं या किसी तरह से पोस्टर्स वगैरह पे भी हैं?
2: एक तो जो हमने गूगल फॉर्म ऑलरेडी प्लान किया हुआ है जिसको हमने बनाया, उसमें कुछ थीम और सब थीम ऑलरेडी अवेलेबल है। सेकंड, हम लोगों ने डिटेल के लिए ऑलरेडी इसमें कुछ व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं फोकल पर्सन के, ताकि स्टूडेंट अगर कोई इसमें फर्दर डिटेल इंस्ट्रक्शन लेना चाह रहे हैं, कहीं कन्फ्यूज हैं, तो वो उनको वहां भी इनकी कन्फ्यूजन दूर भी कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे जो फॉर्म के जो इंट्रोडक्शन है, हमने उसका एक छोटा सा ब्रीफ भी इसके अंदर मेंशन किया है, तो आई होप सो कि काफी सारी इंस्ट्रक्शन वहां पे मेंशन है जो बच्चों को क्लियर हो जाएंगी। एंड देन लेटर ऑन वंस हमारी रजिस्ट्रेशन रिसीव हो जाएंगी, तो हम लोग जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी में है, तो हम उनकी मजीद बेहतर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ अगर रिक्वायर्ड होगी तो वो उस पर भी उनको वो दी जा सकती है इस हवाले से।
1: ठीक है, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, अभी हम चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। आप सुन रहे हैं FM 92.6 और मैं हूँ मरियम इरशाद।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This
2: is 92.6.
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6. मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ. और हमारे पास आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फाहद अनीस, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन गाला के बारे में. सर, अगर कम्युनिकेशन गाला की बात की जाए तो हम हर साल, आपको पता है कि बहुत अच्छा, पूरी फैकल्टीज और पूरी यूनिवर्सिटीज़ में से हमारा जो एक फिल्म फेस्टिवल है उसको हर जगह पर माना जाता है कि यस, फिल्म फेस्टिवल फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन UCP का दी बेस्ट है. तो कम्युनिकेशन गाला और फिल्म फेस्टिवल किस तरह से डिफरेंट है, और क्या कम्युनिकेशन गाला इन फ्यूचर हम इंटर यूनिवर्सिटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलावा डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज का हिस्सा बनेगा?
4: जी, थैंक यू वेरी मच. कम्युनिकेशन गाला और अगर फिल्म फेस्टिवल की बात करूँ तो फिल्म फेस्टिवल आज से 4 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब हम फिल्म की स्पेशलाइज डिग्री लॉन्च कर रहे थे. और उसके पीछे भी यही मकसद था कि जो स्पेशलाइज डिग्री हो तो उसके साथ एक स्पेशलाइज्ड इवेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें. तो आपके पास बिल्कुल दुरुस्त है कि अब 4 साल हर साल हम तकरीबन करते हैं, और हमारा जो फिल्म फेस्टिवल है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हर साल से ऑर्गेनाइज होता है, और उसमें हर साल बेहतर से बेहतर आप कह लें कि एंट्रीज भी आ रही हैं, बल्कि इस साल तो इंटरनेशनल एंट्रीज भी आई हैं. तो एक चीज़ तो जो हमने कम्युनिकेशन गाला और फिल्म फेस्टिवल का जो डिफरेंट बनाता है वो ये कि फिल्म फेस्टिवल इज ओपन फॉर एवरीवन. उसमें यूनिवर्सिटी से बाहर से बहुत सी एंट्रीज आती हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि कम्युनिकेशन गाला में फिलहाल हम इसको खाली अपने UCP तक ही महदूद कर रहे हैं. और दूसरी बात यह कि हमने ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होने दी. फिल्म फेस्टिवल में द फोकस इज इन कि हम फिल्म क्या कंपटीशन दे रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री का कंपटीशन होता है, और उसके साथ साथ हम लोग म्यूजिक वीडियो को हम लोग देख रहे होते हैं. जबकि इन्हीं तीनों कैटेगरीज को हम लोगों ने कम्युनिकेशन गाला में इनकॉर्पोरेट नहीं किया. कम्युनिकेशन गाला में हमने वो सेगमेंट्स ऑफ द मीडिया पिक किए हैं जिनको हम फिल्म फेस्टिवल में टच नहीं करते. जैसे मैंने आपको बताया कि टीवी एंकरिंग होस्टिंग है, रील्स के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, पोस्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और टेलीविजन कमर्शियल और PSM की बात कर रहे हैं, ताकि हम बाकी फील्ड्स ऑफ द मीडिया को भी टच किया जा सके.
3: और सर, जैसे अभी आप बता रहे थे रील्स की बात कर रहे हैं और हम कमर्शियल्स की बात कर रहे हैं और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो क्या कुछ स्पेसिफिक इशूज हैं जिनके ऊपर कहा गया बच्चों को, या दे आर फ्री टू मेक वट एवर दे कैन इन बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटीज?
4: जहाँ तक तो बात टेलीविजन कमर्शियल्स की है या पब्लिक सर्विस मैसेज की है, तो उधर हम लोगों ने ओपन कैटेगरी दी है, क्योंकि टेलीविजन कमर्शियल्स के लिए स्टूडेंट को किसी एक खास टॉपिक या एरिया पे कन्फाइन कर देना तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर इतने शॉर्ट टाइम में टेलीविजन कमर्शियल निकालना सम टाइम मुश्किल हो जाता है. लॉन्ग बिजर अदर दो शॉर्ट तो नहीं, हम लोग एक अच्छा डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन स्टिल अच्छा टीवी से निकालने के लिए एक फोकस टाइम चाहिए होता है. तो हमने उसमें प्रेफरेंस यही दिए कि ओपन कैटेगरी है, तो वो चाहे किसी ब्रांड की प्रमोशनल कैंपेन के हवाले से टीवी से कर रहे हों और या कोई सर्विस पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहे हों. जहाँ तक रील्स की बात है तो उसके लिए हम लोगों ने जरूर कुछ थीम्स दिए हैं, जिनमें से एक फोकस हमारा, जैसे आपको पता है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बात हो रही है, तो हमने उसके हवाले से दिया गया क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो. सोशल इश्यूज पे अगर कोई बनाना चाह रहा हो, बहुत से हमारे सोसाइटी के ऐसे प्रॉब्लम है जिनको हाईलाइट किया जा सकता है. और फिर उसमें कुछ हमने फनी वे में भी हम चाह रहे हैं कि लोग ऐड ऑन करें कि द मोमेंट दैट मैटर्स, कि कौन सा ऐसा लम्हा है जो आपको लगता है कि यस दिस इज इट, तो उसको भी
3: जिसने आपकी जिंदगी बदल दी
4: या जिसने आपको
3: डिप्रेशन दे दिया,
4: इट कैन बी एनीथिंग. तो इस तरह के हमने एरियाज को दिया हुआ है उसके, ताकि स्टूडेंट उस खास थीम से रिलेटेड काम कर सके.
3: सर, कम्युनिकेशन गाला और फिल्म फेस्टिवल और आपकी फैकल्टी की अचीवमेंट्स और स्टार्ट से लेकर अब तक का सफर के ऊपर गुफ्तगू करके बड़ा मजा आया. अब मैं आपसे ये आखिर में बिल्कुल पूछना चाहूंगी कि अगर आप हमारे सामाईन को और हमारे स्टूडेंट्स को अपनी प्रोफेशनल या अपनी एजुकेशनल लाइफ में से कोई एक चीज जो आपने सीखी या एक ऐसा सबक जो आपको याद रह गया और उसको आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो वो ऐसा क्या है जो आप इनके साथ शेयर करना चाहेंगे?
4: वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं इंसान के लाइफ में, और ये जो आखिरी सवाल होता है सबसे मुश्किल होता है नॉर्मली. जब भी जितने मैंने इंटरव्यूज दिए तो मुझे लगता है ये बड़ा टफ है अपनी पूरी लाइफ में से कोई ऐसी चीज़ समराइज करना. लेकिन एक चीज़ मैं अक्सर, बल्कि एक दिन पहले भी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, ही वॉज वेरी डिप्रेस कि सर जॉब्स की समझ नहीं आ रही, करियर के हवाले से क्या करें. तो कहता मुझे किसी ने कहा कि सिर्फ हाथ के पास जाओ. तो मैंने इसको कहा, और कहता सर आप, यानी कि इनिशियल आपका पहला क्वेश्चन भी था और आखिरी में उसको रिलेट भी कर लेता हूँ. जो एक चीज़ मुझे आज तक याद है, जो मेरा कह लें कि मेन एक, मैं जिसको प्रैक्टिस भी करता हूँ, क्योंकि जब हम लोग भी अपने इनिशियल करियर में थे तो सम टाइम ऐसा टाइम आता था कि जॉब्स नहीं मिल रही, टेस्ट दे रहे हैं, फेलियर्स हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि कब
3: क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होंगे भी या नहीं, हमारे साथ वाले आगे निकल गए, हम पीछे रह गए,
4: घर वाले हैं, उनकी नजरें आपसे कुछ पूछ रही हैं, कुछ जानना चाह रही हैं. तो वो कुछ सर्टन टाइम बड़ा टफ होता है और मुझे लगता है चैलेंजिंग भी होता है, और फिर हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा होता है, तो उसमें से अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी करनी होती है. तो उस टाइम पे हमारे एक टीचर हैं, तो हम अक्सर तीन दोस्त ना उनके पास चला जाया करते जब भी हम फील करते यार नाउ वी फीलिंग लो, तो वो उन्होंने जब हमने जाना तो उन्होंने हमें इस तरीके से मोटिवेट करना, और बल्कि मैं उनका नाम भी देता हूँ, नईम मुस्तफा साहब हैं, मैं इसलिए उनको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ कि उन्होंने हमारे टफ टाइम में हमें बहुत ज्यादा हमें मेंटोरिंग की है। व्हेन वी वेंट टू हिम तो वो हमें वहां पे बैठे बैठे करोड़पति बना दिया करते थे, इस हद तक मोटिवेट करते थे वो हमें।
3: टीचर जो है वो एक बच्चे की लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में एक टीचर और उसके पेरेंट्स का बहुत रोल होता है,
4: तो वो बहुत मोटिवेट किया करते थे। और उसके बाद उन्होंने तीन बातें हमें कही कि यार इस पे ना आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, या जो भी आप अपना बेस्ट दे सको वो दो। उन्होंने कहा जी एक, अगर किसी का रिस्क लगवाना हो, जॉब लगवानी हो, तो जितनी एफर्ट आप उसमें डाल सको आप डालो नेक नीयत के साथ, तो कभी इससे पीछे नहीं हटना। दूसरा उन्होंने कहा जी कि लोगों की हेल्थ के हवाले से अगर कोई इशू हो और अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सके किसी भी तरह से, उनको कहीं अच्छा मशवरा दे के फाइनेंशियली या कहीं गाइड करके या किसी को रिक्वेस्ट करके कि उनको जो भी फैसिलिटी उनको मिल सके, तो उस पे हेल्थ के हवाले से जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए तो कोशिश करें टू द बेस्ट ऑफ योर आप उसको परफॉर्म करें। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा जी कि एजुकेशन के लिए, अगर आपको किसी के एजुकेशन के लिए जो भी एफर्ट करनी पड़े, जिस भी हद तक जाना पड़े, जरूर जाएं। अगर ये इन तीन चीज़ों को आपने सबका जारी है समझ के करना है, और वही कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं की जो जो चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई उसी को अमानतन एज इट इज आगे पहुंचा रहे हैं। और आई थिंक यही मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है, और जिसको मैं बाकायदा कॉन्शियस माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो यही मैं अपने सामईन को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को कहना चाहूंगा कि इन चीज़ों को फॉलो करें, एंड देन रेस्ट इज अपॉन Almighty, वो हमेशा अच्छा ही करेगा।
3: आपसे गुफ्तगू करके बहुत मजा आया, मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया आपने फिकेलिटी आर के लिए हमें वक्त दिया और हमारे लिसनर्स को और मुझे सीखने के लिए इतना कुछ दे दिया, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं FM 92.6, और इसी के साथ हमारे ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले वीक दोबारा एक मजे से अच्छे से मेहमान के साथ हम फिकेलिटी आर में आपके साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया, मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फिकेलिटी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फिकेलिटी आर के साथ।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: यही है मेरी पहली आशिकी।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: न्यूज़। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं बस एक बार, शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को 2000।
1: 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मजार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी, सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढकती। 40 साल तक मजार हैलेलुया से गूंजता रहा, फिर सलीब तो उतर गई लेकिन मजार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मजार इश्क की रोशनी में नहा जाता है, लेकिन ये मंजर तारीख दानों के लिए नहीं, सिर्फ दिल वाले ही इसे देख सकते हैं।
2: ये आवाज है

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।